मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।

जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।

0: from the heart of Bedfordshire in Luton. This is Inspire FM.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: इस दिल को जिंदा करने वाली चीज क्या है? सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत जो खुशी देती है इंसान को, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, उसकी किताब की मोहब्बत, और फिर अल्लाह वालों की मोहब्बत, हर उस चीज की मोहब्बत जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। इसीलिए दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा रज़क़ना हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिका। तो इंसान के पास कुछ वक्त ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें उसके जज्बात हैं, और फिर उसके बाद आप देखें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, शौहर की मोहब्बत, बीवी की, बहन भाइयों की, रिश्तों की, दोस्तों की, ये सारी मोहब्बतें होती हैं ना। अब अगर कोई इंसान कहे मुझे किसी कोई सरोकार नहीं, मुझे तो अपने वालिदैन से भी कोई मोहब्बत नहीं, और औलाद से तो मेरे को गर्ज ही नहीं, और दोस्त तो मैंने कभी आज तक को बनाया ही नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम व तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर एफएम।
2: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك أبو داود والنسائي.
3: Hadith 38. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, when Allah created paradise and hellfire, he sent Jibreel to paradise, saying, look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he came to it and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to him and said, by your glory, no one hears of it without entering it. So he ordered that it be encompassed by forms of hardship. And he said, return to it and look at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to it and found that it was encompassed by forms of hardship. Then he returned to him and said, by your glory, I fear that no one will enter it. He said, go to hellfire and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. And he found that it was in layers, one above the other. Then he returned to him and said, by your glory, no one who hears of it will enter it. So he ordered that it be encompassed by lusts. Then he said, return to it. And he returned to it and said, by your glory, I am frightened that no one will escape from entering it. It was related by At-Tirmidhi, who said that it was a good and sound hadith, also by Abu Dawud and An-Nasai.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the best of you are those who learn the Quran and teach it. Start today by reading a few verses and let that become a part of your daily routine. Stay connected.

0: ठीक है जी, कैसे बनाती हैं आप ये क्लिप?
1: मैं कुछ नहीं करती साला, सब कुछ आप करते हैं।
0: यानी कि फिर वही वाली, ये तो आप बिल्कुल वही कह रही हैं जो मैं भी कुछ नहीं करता, ये सब आप करते हैं। क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं करके अगर ये बनता है और आपका भी कुछ नहीं करके ये बनता है तो अल्लाह करे हम सारे, अच्छा हमारे बारे में शायद उन्होंने कहा था ना वो जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। तो ये था वो कमाल, अब हमको समझ आए। हम तो जलाल से जमाल तक, बल्कि जमाल से जलाल तक पहुंचे और फिर कहीं ना कहीं हमें नज़र आया कि हम कमाल मिस कर रहे हैं। और ये सारे के सारे मेरे नेफ्यूज़ के नाम हैं।
1: अच्छा, ये जो भी आपने बताए।
0: हाँ जी, सारे के सारे बहुत टैलेंटेड और कमाल बच्चे हैं
1: माशाल्लाह।
0: सारे अपने आप को हमसे बहुत समझदार समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे। और एक मेरे भांजे ने एक दफ़ा मुझे कहा जवानी में कि मामू अगर मैं आपकी तरह हैंडसम होता ना, ठीक है ये बात है आज से कोई 25 साल पुरानी, और वो भी बाद में उसने भी आर्मी वगैरह ज्वाइन किया, मामू मैं आपकी तरह होता ना तो मैं लुट डाल देता, ठीक है। तो मैंने आगे से कहा मेरा पुत्र अल्लाह इसीलिए गंजे को नाखून नहीं देता क्योंकि वो अपना सर छीन लेगा, तो रब ने तुझे मेरी तरह नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था तो लुट डाल देगा।
1: तो
0: लुट डालने की जरूरत नहीं है, लुट आपके होने से वैसे ही पड़ जाती है। आज वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना रैंक्स वैंक चीज़ें शीज़ें ये सब कुछ करता है, तो मुझे उसके बारे में कुछ उसने बड़ी एक दो बातें पाई, बड़े साल हो गए तकरीबन 15 भी मुलाकात नहीं हो सकी, वो अपने काम पे होता है, तो एक दो बातें मुझे पता चली जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो जब मुलाकात होगी। और ये वो बच्चा हुआ करता था जब मैं स्कूल में हम पढ़ा करते थे, तो हम सीनियर थे स्कूल में और इसको नया नया स्कूल में दाखिल किया, तो वो स्कूल वही था, तो जहाँ हमारी क्लास थी ना उसके बिल्कुल साथ वो घंटी लगी हुई थी, वो यू नो पीरियड दिखाने के लिए नहीं, वो क्लास का जो पीरियड ख़त्म होता है तो वो जो घंटी बजती है तो बिल्कुल हमारे कान के पास लगी होती थी। तो इसको हमने नया नया स्कूल में दाखिल किया, उसी स्कूल में उनके रिश्तेदारों का भी था वो, तो स्कूल में हम बैठे हुए हैं, हमारी टीचर कोई बड़ी सब मुश्किल चीज़ मतलब पढ़ा रही है और हम बैठे हुए हैं वहाँ क्लास में, हम भी 5वीं 6वीं में थे 10-12 साल के। तो एकदम खिड़की में से आवाज़ आई मामू। मैं तो जब पैदा हुआ था तो बताया तो है, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं मामू था।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, मेरी एक भांजी मेरे से 1 साल बड़ी है, हमें पैदा करने के लिए बड़ी तकलीफें काटी गई, 35-34 साल की तपस्या की गई।
1: हाँ, आप बता रहे थे खान जी,
0: उस तपस्या के बाद हम पैदा हुए, पठानों के लिए उनको लगता था हमारी बड़ी जमीन है, जो कि बाद में पता चला इतनी थी नहीं। और उस गांव में गांव के जो ना जो कुछ लोग होते थे जमींदार, उसमें हम लोग हुआ करते थे।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: No father can give his children a better gift than good manners. Reported by Tirmidhi.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and

0: clinical negligence, their expert team is here to help. M&K solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
1: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom, and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org, or YouTube and Facebook. The Salah Series on Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
4: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
5: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
6: Alright, cheers.
4: Think. Don't drive tired.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
8: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
9: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
10: Jo 4-5 saal maine aur main bade pyar se main keh do fir main jab civil life mein aaya to maine dekha to yahan to koi civil hi nahi hai. تو پھر تو عامی میں اس کے مسائل تھے, سول میں ان کے مسائل تھے, تو دونوں کو ملا کے جو چیزیں ہم نے کی, پھر جو ریلیجن میں ہمیں جو پڑھایا گیا جب میں یہاں پہ آیا, اس وقت بھی میں ڈفرینٹ ریلیجن پڑھتا تھا, میرے کرسچن ہندو سکھ وغیرہ فرینڈ ہوا کرتے تھے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. تب میرے اور میڈیا کے بھی فرینڈس تھے, کچھ اور پولیٹیشنز بھی فرینڈ تھے, بڑے بڑے لوگ بھی میرے دوست تھے, تو وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اور مجھے رپورٹس آتی تھیں کہ بھائی آپ اس سے مل رہے ہیں اس سے مل رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں. میں کہا جی میں کچھ نہیں چاہ رہا, یہ ملنگوں کے پاس خود آتے ہیں. تو ہم تو ایسے لائف دیکھ رہا تھا, میں ایکسپیرئنس کر رہا تھا, ہم تمام ریلیجن کے لوگوں کو مل رہا تھا, کھانے ہر قسم کے ریسٹورنٹس میں جا کے کھا رہا تھا تاکہ یو نو سب مجھے پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی حلیم, 21 ایئر تک حلیم میں نے لاہور میں آ کے کھائی, نہاری میں نے کبھی نہیں کھائی تھی. وہ وہاں پہ ہم تو سیدھا سیدھا پلاؤ بریانی, تو بریانی بھی اس طرح سچ نہیں ہوتی تھی, پلاؤ ہوتے تھے, ساگ گوشت آلو گوشت اس قسم کے جو نا پائے اس قسم کے کھانے ہوتے تھے, یہ خاکینہ اور یہ ساری چیزیں. تو عامی میں آ کے پھر لاہور میں ڈفرینٹ قسم کے کھانے ہم سمجھے کہ کنہا کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد हरीसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर हमने, फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे, फिर हमने, मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि पता चले, तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आमी आपको सिखा देती है। तो ये करते करते करते फिर अब मैं कहीं बैठा होता हूँ लोगों के साथ, तो अच्छे खासे गोरे हमारे साथ बैठे होते हैं, उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते खाना खाने के, कुर्सी पे किस तरफ से बैठना है, किस तरफ से उठना है, कौन सी चीज़ के साथ क्या खाना है, अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको नहीं आता, ये सब मिलियनेयर्स हैं, कई बाद में बने हैं ना। सो ये सारी चीज़ें बेसिक मैनरिज़म्स और सब तमीज़ तहजीब लेडीज़ के साथ, मर्दों के साथ, लोगों के साथ बिहेवियर करना, ये सब आपको आर्मी सिखाती है, और एक पूरा आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये चार्म स्कूल के अंदर होते हैं अगर आप ध्यान दें तो, ये तमाम चीज़ों से, और रख रखाव होता है, छोटे बड़े की अदब एहतराम तमीज़ होती है, सीनियर का की एक से होती है, जूनियर का जिस कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है। तो वो एक ये सारी चीज़ें सीख कर, नहीं सीखी होती तो ये सब कुछ थोड़ी हो रहा होता जो आज हो रहा है। तो इसलिए मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आर्मी और बहुत बड़ा पार्ट है लाहौर का, और मैं बड़ा उसको अभी भी जब जाता हूँ, मैं जब भी मेरी 10 दिन की छुट्टी होती थी, 5 दिन मैं लाहौर में रहता था, 5 दिन 3-4 दिन घर में, बाकी इधर उधर, बाकी वापस आके लाहौर में, क्योंकि दुनिया देख रहा था मैं, ज़िंदगी देख रहा था। मैंने वहीं से फिर अपनी MBA की डिग्री भी की व्हाइल आई वाज यू नो डूइंग माय थिंग्स। उसी में फिर मैंने मार्केटिंग में, फैशन मैगज़ीन था उसके अंदर मैंने सेल्स का भी कुछ ऐसा काम था, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो भी मैंने की, फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से उसमें, फिर बाद में मेरे साल एक मुझे मिला, मैंने उसमें भी काम किया, फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मिलाकर फिर मैं वापडा में रहा, पुलिस में रहा, यू नो ये सारे काम मैंने देखे कि स्ट्रक्चर अपर लोअर मिडिल स्ट्रेटा काम कैसे करता है, रियलिटी में चीज़ें कैसे होती हैं, जो हम समझते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती। पॉलिटिशन से मिला, बड़े बड़े जर्नलों से मिला जो कि यू नो पॉलिसी और मुल्क रन कर रहे थे, गवर्नर से मिला, यू नो इस तरह की चीज़ें हुई, उससे फिर मिल के मुझे समझ आई कि ये कहानी वो है ही नहीं जो हमें सुनाई बताई जाती है, आम आदमी बेचारे को कुछ नहीं पता, वो वैसे ही जज्बाती गला फाड़ते रहते हैं या उनको लगता है कि हमें पता है, तो मीडिया ने जो बताना होता है वो इतनी खबर बाहर जाती है जिसका कोई मकसद होता है और माइंड शेप अप किया जा रहा होता है लोगों का, और जो कुछ भी खबरों में होता है वो एक्चुअल में कोई खबर नहीं होती, खबर कुछ और होती है जिसको छुपाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। फिर आप फिल्मों में आए, मूवीज़ देखी, चीज़ें देखी, ट्रैवल किया, उससे फिर बहुत बार सारी चीज़ें पता चली, फिर लिखना शुरू किया, फिर यू नो और लोगों से मीडिया में इंटरेक्ट किया, फिर हॉलीवुड में कुछ लोगों से मिले, बात की, काम किया कुछ अरसे के लिए, तो फिर उससे और बहुत सारी लर्निंग हुई। बहुत कुछ जानने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना है और कितना छोटा भी काफ़ी है और अपना अगर हो तो बहुत बेहतर है, और लोगों के साथ कलेबरेशन करके कैसी चीज़ें की जा सकती हैं इस पर काम किया, तो ये सब मिलकर एक एजुकेशन बनती है। और ये सब जब हो रहा था तो साथ इंसान, मर्द, औरतें, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, उनसे बहुत सारी विजडम जो है वो कशीद करनी पड़ती है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, और वो 8-10 चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ, जो उतना कुछ कम अज़ कम ज़रूर पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं, जी सकते हैं, और रिश्तों पे और ख़ुद पे काम कर सकते हैं, और फिर आप अपना टाइम ऐसा मैनेज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चाहने के बजाय चीज़ें थोड़ी थोड़ी हों, साफ़ हों, बेहतर हों, और एक बैलेंस के अंदर हों, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हैं और आगे किसी चीज़ को भी डिवेलप, कुछ भी करना चाहें आप आराम आराम से कर सकते हैं। ये थी पूरी ज़िंदगी एक बड़े से नटशेल में। देखें आप साथ साथ चल रही थी, किसी ने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने भी फिर नहीं बताया, इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में फिर बताना पड़ा ना।
11: लेकिन ज्यादा ना वो आपने इतना कुछ इसलिए सीखा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत माशाल्लाह से अच्छी है, और कोई दूसरे बहुत से लोग होंगे उनका ये एक्सपोजर हुआ होगा लेकिन उन्होंने इतना नहीं सीखा होगा।
10: उसकी रीजन ये है कि मैंने जितनी भी चीजें सीखी है ना वो इसलिए सीखी है कि ये तमाम चीजें मेरे पास नहीं थी। ऑब्जर्वेशन मेरी इसलिए बनी कि जब आप फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, तो फिर आपकी तीसरी आंख खुल जाती है ऑब्जर्व करने की। वो ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं फिजिकली अगर वीक हूँ तो मुझे अपने आप को कैसे हैंडल करना है, और अगर मुझे मेंटली वीक हूँ तो मुझे कैसे हैंडल करना है अपने आप को। तो ऑब्जर्वेशन से आहिस्ता आहिस्ता किस जगह पर आपने जाना है, किसके पास नहीं जाना, किससे दूर रहना है, अगर आप फिजिकली वीक हैं तो आपका माइंड भी वीक होता है तो कैसे चलना है, तो वो जो कमज़ोरियाँ थी मेरी, एज़मा भी चल रहा है, स्टैमरिंग भी चल रही है, वो जो इन्वायरमेंट था मैं उसमें भी यू नो बहुत अनफिट सा था, तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को, डर जो मेरे थे उसको दूर करने के लिए मैंने गौर करना शुरू कर दिया चीज़ों के ऊपर, क्या चीज़ मेरे लिए है क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जब ऑब्जर्व करते जाते हैं आप, तो पता चल जाता है आपकी वीकनेस क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे लोगों से दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी, किस जगह किस एनवायरमेंट के अंदर यू नो आपने चेक कर लिया चीज़ों को, ये नहीं है, तो आप दूर तक देखने की एबिलिटी रख सकते हैं उस वक्त, क्योंकि आपको एक घबराहट की वजह से एक आप सोचने का तरीका एक ईजाद करते हो। बाकी लोग क्योंकि ताकतवर होते हैं यू नो चीज़ों को लगता है कि हैंडल कर लेते हैं, पावर थ्रू भी चीज़ों को कर लेते हैं, अपनी मनमानी कर लेते हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा हो सकता था। हमारे घर में मैं एक हद तक ही जोर लगा सकता था, उसमें घर में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के दो लोग थे जो सब रन कर रहे थे, तो उसमें मैं कब तक ये करता रहता। तो बिल्कुल इसी तरह फिर जब ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाती है तो फिर इमेजिनेशन भी बढ़ती जाती है, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में आप अपने साथ सच बोलना शुरू कर लेते हैं। मुझे बचपन से लोग कहते थे आप ये इसमें बड़े अच्छे हैं उसमें बड़े अच्छे हैं, जवानी में कहते थे आप ये हैं आप वो हैं आप फलां हैं, मुझे अंदर से पता था ये जो भी कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, मुझे पता है कितना मैं हूँ, किस योगा में हूँ और बाकी किस तरफ मुझे काम करना है और मुझे किस, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था सब कहते थे आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं आप ये कर सकते हैं वो, मुझे एग्जैक्ट पता था कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, एक हद तक मेरी एबिलिटी है, इससे आगे वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मुझ में नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है या टेक्निक नहीं है, या तो फिर मुझे वहाँ रोक कर किसी और तरफ सोचना था। मैं इस तरह नहीं कर सकता था मैं खेलता रहूँ और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लूँ इस सोच में कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम में चला जाऊँगा, आई वॉज़ नॉट दैट गुड, सिंपल। इस तरह बाकी मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई की, आर्मी में गया, कुछ और चीज़ें मैंने देखी, सिविल में कुछ काम किए मैंने देखा, फिर एक दिन मैं चीज़ें करके छोड़ता चला गया और यू नो चीज़ों को ट्राई करता गया। लोग जो कह रहे थे कि वक्त ज़ाया हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं था, लोग जो कह रहे थे कि आप इसमें अच्छे हैं उसमें बुरे हैं उनको कुछ पता नहीं था, यू नो लोग जो है ना वो बहुत लगता है उन्हें पता है बट इतना उनको पता नहीं होता, वो लगता है कि वो समझते हैं लेकिन वो इतना समझते नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर होते हैं और आप ऑनेस्टली सिचुएशन को देख रहे होते हैं और आप दीवाने का ख्वाब नहीं देख रहे होते, आप हाजिर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं और आप प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, फिर लोगों की बातों में आप नहीं आते। एक वक्त के बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीधी कर लेते हैं, फिर जब आपसे लोग कहते हैं ना आप ये कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ चलो ट्राई कर लेते हैं, तो फिर जब मुझे किसी ने कहा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, मुझे ये भी किसी ने पहली दफ़ा कहा था आप रेडियो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं फिर डैलस में आया तो मैंने कोशिश की चलो रेडियो करने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह मुझे किसी ने कहा था आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं, ये आशा जी ने कहा था बाय द वे, स्टेज प्ले वाला हमने किसी से लिखवाया था उल्टा सीधा था, उल्टी सी मैं ये चीज़ करवाना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा था ऑनेस्टली आई थिंक यू कैन राइट सो मच बेटर देन दिस आज़ाद, और दिन थे नहीं मेरे पास, कुल चार दिन रह गए थे, उसमें जी लैंड कर चुकी थी सैन फ्रांसिस्को में, तो अब मुझे ही लिखना था, तो जब मैंने लिखा तो वो जिस तरह लिखा गया जिस तरह फ्लो आया उसके अंदर मुझे भी मज़ा आया, तो फिर हमने दूसरा लिखा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा लिखा, फिर यही तरीका था ऑब्जर्वेशंस को लोगों तक पहुंचाने का, फिर जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने ये काम करना था आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाते अपने आप को, उस पर काम करते जाते हैं मेंटली फिजिकली और यू नो उस क्राफ्ट के ऊपर, फिर एक दिन आता है जब आप सही राइट टाइम एंड स्पेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो वो फिर जब हम रेडी हुए तो पहले उस्मा गिलानी वाला आया, फिर नुमान एजाज का आया, फिर अभी एक दो और चीज़ों के लिए हम तैयारी पकड़ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, अब माइंड बन गया हमारा तो अब सब कुछ सामने आ जाएगा खुद ब खुद। तो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, और कैसे कैसे आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं मेरी ज़िंदगी की जो सारी चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ, इसलिए कि आपको मैनिफेस्टेशन नज़र आ सके, इसलिए कि एक आम सा आदमी आम से तरीके से आम से यू नो छोटे से टैलेंट के साथ अगर ये चीज़ें कर सकता है तो ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे से ज़्यादा बहादुर हैं, मेरे से ज़्यादा जो है उनका टैलेंट है वो, मेरे से ज़्यादा उनके पास गिफ्ट है और मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी है उनके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे हैव मोर लाइफ देन आई हैव इनसाइड ऑफ मी, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी बहुत ऐसी हैं कि जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, तो फिर मैं ये करके उनको सिर्फ दिखा देता हूँ कि वो जहाँ तक जाना चाहें, जितना गुड़ डाले उतना मीठा हो सकता। मैं सांस ले लूँ?
11: हाँ ले ले।
10: क्या सीखा आपने?
11: बहुत कुछ सीखा आज मैंने।
10: आपको हर दफा ये लगता है कि इतना सीख लिया अगली दफा क्या सीखूंगी, फिर आपको लगता है नहीं आज सीखा हमने।
11: नहीं आजादा मैं अभी जो बात कर रहे थे आप, तो माशाल्लाह आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली?
10: पहले तो आर्टिस्ट वो होता है जो पहले थोड़ा सा ऑटिस्टिक हो। समझ रहे हैं? आर्टिस्ट जो होता है ना वो पोएट एट हार्ट होना, या आर्टिस्टिक होना, कई दफ़ा जिस एनवायरनमेंट में हम हैं ना, हम इतने बदकिस्मत एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि आर्टिस्ट से शुरू में ही लोग डर जाते हैं, उसको नाजुक समझना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। आप कोई बंदा, जब हम बड़े हो रहे थे तो कोई बंदा FSC में अगर साइंस के बजाय आर्ट्स ले लेता, सारे उसको पहले से ही वीक समझना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो मैं, अच्छी बात यह है, जो काम मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, शुरू में मुझे नहीं पता था ये सब कुछ कि मैं ये एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग पोम्स एंड ये सब कुछ करूँगा, ना मैंने कभी ज़िंदगी में कोई एक लाइन भी लिखी थी। लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में, मैं लकी ये था कि मैं जिस प्रोफेशन में गया ना, वो प्रोफेशन आपको मेंटली और फिज़िकली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है, आपको मैनेजमेंट का आदमी बनाता है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप पहले खुद को मैनेज करते हैं फिजिकली, इतनी मुश्किल वक्त में से आप गुजरते हैं, आपको पता चलता है आप नहीं मरेंगे, और फिर उसके बाद आप उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पावर्स दी जाती हैं, और फिर आपके लिए बहुत सारे बंदे हैं जिनका आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी लाइफ पूरी आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, ऑफिस को मैनेज करना, किसी आउटफिट को मैनेज करना, किसी बंदे की लाइफ को मैनेज करना, और ये सब आप खुद पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं खुद पे अप्लाई करना, लेकिन जब आप खुद पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एक यूनिट के या किसी आउटफिट के फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं, आप अपने भी हैंडल करना सीख लेते हैं। उसमें 400-500 टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट इलाकों से लोग आए होते हैं, किसी को प्यार से समझाना है, किसी को गुस्से से, किसी को डंडे से, किसी को सजा से, किसी को वर्बल वार्निंग से, किसी को बाकी चीज़ों से। उसके बाद ये सब तरीके भी आप सीखते हैं और अपने आप पे और अपनी फैमिली पे, अपने घर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट्स हैं। जब आप ये सीख लेते हैं मैनेज करना, तो उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो आपको पता होता है, ये मैं चीज़ क्रिएट करने जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं सपोर्ट खुद को कैसे करूँगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है मेरी। तो आप मैनेज करते रहते हैं लाइफ को साथ, हर वक्त आप मैनेज कर रहे होते हैं, यही काम है। सो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फिर कब आप पोएम्स लिखते हैं, फिर किस प्लेटफॉर्म में आपने ये पोएम सुनानी है, या किस चीज़ का इसको हिस्सा बनाना है, प्ले अगर आप करते हैं, अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है रेडियो का, जिसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, डिजिटल मीडिया भी इन्वॉल्व है, शहर में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक आपने एक चीज़ बना ली है, तो उसमें आप अगर लोगों को मूवीज़ दिखाना शुरू करें तो वो भी चल जाता है काम। अब आप आर्ट एग्जिबिशन करें कि जिस किस्म के हमारे पास लोग हैं, वो भी चल जाता है, क्लोज एग्जिबिशन करें वो भी चल जाता है। इसी तरह आप स्टेज प्ले, लोग जाके ब्रॉडवे पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे $500-500 के टिकट ले रहे होते हैं, $50 में भी आप ब्रॉडवे का एक टाइप का एक शो दिखा सकते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें, हंसना, खेलना और कोई मकसद की बात भी हो सकती है, तो आप स्टेज प्ले कर लेते हैं। इसी तरह आप फिर टाइम मिलता है आपको, आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग असल वाली देखें कि होती क्या है, जुमले पे जुमला बिठा देना या लाइन डिलीवर कर लेना एक्टिंग नहीं होती है। तो इसके लिए फिर मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए LA गया मैं, वहाँ से फिर मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो स्कूल ऑफ आर्ट एंड थिएटर है, तो उसमें फिर थिएटर कैसे बनता है, उसमें कैसे एक्टिंग होती है, थिएटर की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, वेब सीरीज़ की एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, ये डिफरेंट होती है। इसे बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे नुआंसेज होते हैं, तो आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है। ये करेंगे तो होगा, कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और कोई बंदा भी मुझसे या अपने आप से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छी नज़म लिख दूंगा, बहुत अच्छा प्ले लिख दूंगा, या बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा। लेकिन अलॉन्ग द वे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी और चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं आपके अंदर, वो कैरेक्टर लिखा किसने, मैं नहीं लिखा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, एक्ट उसमें एक कौन कर रहा है, वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करती हैं कॉन्फिडेंस से, और जो भी घबराहट और नर्वसनेस होती है उसको हैंडल करती हैं, और आप एक काम कर जाते हैं और डिसेंट सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो पहले से दूसरे से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं, जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15 20 25 30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पे सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15-20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग, सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया, ठीक ही था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें, कुछ चीज़ों को वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुल कर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं, कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं। कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं। कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा। लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में। अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है। आप उस ब्रेन वेव के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़ जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें। और उसको नोक पलक संवारने में, जैसे यू नो एक स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है। आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है। उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
11: बहुत ज़बरदस्त।
10: कोई पॉइंट मिस हुआ आज?
11: नहीं।
10: ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
11: आपने नाइक्विल नहीं और ये हाल है
10: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे। तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा। और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
11: इंशाल्लाह।
10: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ, और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे। और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में, तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया वो?
11: हाँ जी, वो पहले तो उसी तरह पानी डाल के साफ
10: दे वो डैमेज है, ये तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं, और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना। आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
11: नहीं, वो पहले जमाने में होता।
10: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मरकरी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मरकरी निकालना है, और जो मरकरी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा जी ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई हैं जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मरकरी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मरकरी डाल रहे थे उस ज़माने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते। तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मरकरी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है। वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
11: हाँ जी,
10: डेंटल से ही उनको हुआ था।
11: नहीं ये सब अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त।
10: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए।
11: تو
10: لوگ کہیں, لوگ کہیں, پتہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا ایک نارمل برین کا آدمی یہ کام تو نہیں کر سکتا جو بول کے لفظ آ رہے ہیں. تو میں جاتے ہوئے لوگ اپنی آنکھیں کان ناک دے رہے ہیں, میرے کسی کام کے تو ہے نہیں, میں برین دے جاؤں گا کہ اس کو کھولو چیک کرو کہاں پہ چوٹ لگی تھی بچپن میں. یہ جو میں دریا میں گرا تھا گھوڑے سے اور پل کے نیچے سے آیا تھا تو وہاں تو سٹ نہیں لگی میرے سر میں. یہ
11: اللہ زیادہ لو, وہ ایک الگ واقعہ جو آپ نے سنایا تھا, وہ جو آپ گر گئے تھے.
10: آئی واز جسٹ 1 ایئر اولڈ, ہاں جی, ایک سال کا تھا میں.
11: اللہ,
10: گھوڑی پہ میں شیر خان کے ساتھ جا رہا ہوں.
11: عجیب عجیب چیزیں ہوئی ہیں
10: پتہ نہیں. اور جو بھی ہوا اس کے بعد میں بہت بیمار ہو گیا تھا, میری ماں کہتی ہے. تو اس کے بعد نا کوئی چیز میری پھر الرجیز نارمل نہیں رہی, مجھے ہر چیز پھر اس کے بعد ہی شروع ہوئی تھی. بٹ بچ گئے, اس پانی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ایک طرف, دوسری طرف وہ پتھروں کا پل تھا, اس کے نیچے کتنے بڑے بڑے پتھر ہو سکتے تھے بچے کا جو سر. اور جو بھی مجھے چوٹ لگی ہے اس کے بعد سے شو نکلا ہے, شکر ہے میں,
11: شکر ہے.
10: کچھ چوٹیں جیسے کہتے ہیں نا, کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں, اسی طرح کچھ چوٹیں بھی اچھی ہوتی ہیں لگتا ہے, اگر پیار سے ماری جائیں اور رب کی طرف سے نا, وہ وہ ایک لات جو کبے کو راس آ گئی اور اس کا ہنچ جو تھا نا, وہ ہنچ بیک جو تھا نا وہ سیدھا ہو گیا. اور بیسکلی بلیسنگز آپ لوگ ہیں, اور آپ نے ابھی جو اتنا اچھا وقت ہمارے ساتھ گزارا اس کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج ایک سٹریسفل ڈے کو ڈی سٹریس کرنے میں اپنا تین مہربان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. آج کالز ویسے کم تھیں لیکن میرا خیال ہے لوگ جب آپ اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور شہناز جی اور ہیرا سنگھ جی تو فیوریٹ لوگ ہیں لوگوں کے, تو ان کی ڈسکشن سے جو شگوفے پھوٹتے ہیں, جو کلپس بنتے ہیں, اور جو شو جس قسم کا بنتا ہے لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے. پچھلے تینوں شوز جو ہیں یہ ابھی تک بہت اچھے رہے, میں گریٹفل ہوں. اور آپ کو رب جو ہے وہ صحت اور بھی اچھی اور بہتر عطا کرے تاکہ آپ سارے سویٹر کے بٹن خود بند کر سکیں, ٹھیک ہے جی, اور خوش رہ سکیں. اسی طرح کھنکھناتی ہوئی ہنسی جب آپ نہیں تھیں تو ہم نے آپ کا یو آر لسننگ ٹو لیڈیو آزاد, ہیلو ہیلو مائی ڈارلنگس, وہ سب جو تھا وہ ہم نے لوگوں کے گوشت گزار کیا اور روحانی طور پہ آپ کو پریزنٹ رکھا تاکہ آپ کی بلیسنگز جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شو میں رہ سکیں.
11: سلامت شہزاد,
10: خوش رہیں, گریٹفل. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اجازت چاہتے ہیں آپ سے, وقت ہوا چاہتا ہے جی کموشل بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کے لیے خبرنامہ, خبرنامے کے بعد آپ کا شو, اور آج کا جو پوم اور آپ کا ٹریک جو ہے ہم پہ ادھار رہا اگلے شو میں. اگلا شو اس سے بہت بہتر ہونے والا ہے. اس شو سے پہلے ہم نے کچھ, ابھی رمضان آنے والا ہے, رمضان میں بہت امپورٹنٹ براڈ کاسٹ کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں, وہ بھی ہم دس نے شو میں آپ سے کریں گے. کچھ نئے ٹاپکس ہم نے آپ کو دینے اگلے شو کے, اور بہت مزیدار ٹاپکس جو پہلے کبھی کسی ریڈیو پہ نہیں ہوئے ہوں گے. کبھی بول کے لب آزاد ہے تیرے میں نے, ایسے ایک دو ٹاپک ہیں جس سے جو ریلیٹڈ ہے ہماری آڈینس سے, وہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ. کچھ فن کریٹ کریں گے ان دنوں میں, پھر آہستہ آہستہ ٹاپکس, اور پھر ہم نے شو سے کیا سیکھا, اور اس کے بعد ہم ٹرانسفارم کر جائیں گے اپنے سیزن 18. یہ سیزن 17 آج تک کا سب سے لمبا سیزن تھا, اور یہ تمام آپ لوگوں کی مہربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے. جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم نے کام کیا اور آپ لوگوں نے اس کو سلام کیا, اس کا آپ کو بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بات تو یاد ہوگی جس کی وجہ سے یہ شو بنا, پھیلا, پھلا پھولا اور یہاں تک پہنچا. یہ کریں گے, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ وہ کی ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ جو چیز ہم نے ایک آپ کے لیے بنائی ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: डायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 9 o'clock।
2: द फॉलोइंग प्रोग्राम इज अ सीरा बाय अब्दुल नासिर जंगदा।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اوف يا ترى دروني عاده ولا ان مستهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. اس آیت کے بارے میں ہم سم کچھ اس کے جو لمسات ہیں, اس میں جو باریک نازک حکمت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی بات کرنی پڑے گی مجھے. کلام میں, سپیچ میں دو طرح کی, اس کی تقسیم بہت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تقسیم یہ ہے کہ جو بات واقعی ہو رہی ہے اور جو بات ہونے کا امکان ہے, کون سی بات میں زیادہ زور ہے, جو واقعی ہے یا جس کا امکان ہے. حقیقت ہمیشہ زیادہ پرزور ہوتی ہے امکان سے, ہے نا. کسی بھی زبان میں آپ اپنی بات میں زیادہ زور ڈال سکتے ہو. میں نے کھایا, بے شک میں نے کھایا, میں نے کھایا. زبان اپنی آواز اونچی کر کے یا بے شک کا اضافہ کر کے, یا میں ہی ہوں جس نے کھایا, آپ اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی بات کو اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پرزور بنا سکتے ہو. اس کو کہا جاتا ہے توکید. عربی میں سے کہتے ہیں کیا؟ توکید. تو اگر نارمل سی بات ہے تو اس کو کہنے, اس کا درجہ ہے زیرو, اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے. اس میں آپ پرزور الفاظ ڈالو گے تو اس بات میں آپ اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہو اس بات کا, اس پہ اور زور اور زور اور زور اور زور, اور زور. جیسے عربی میں انا کا لفظ ہے, لقد کا لفظ ہے, لا کا لفظ ہے, اور الفاظ ہیں جس سے زور کلام میں زور بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈالو گے تو بات ویسے تو نارمل تھی لیکن اس بات میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے, کمزوری کمزوری کمزوری اور کمزوری اور کمزوری. تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں. میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. ولا ان مستهم, اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ ان کو چھو لے, کیا چھو لے؟ نفحتن, ایک جھونک, من عذاب ربک, تیرے رب کے عذاب میں سے ان کو ایک جھونک بھی چھو لے, ہوا کی جھونک. لیقولن, قسم سے بار بار کہیں گے, یا ویلنا, کیا مصیبت ہم پر آ گئی, انا کنا ظالمین, ہم ہی تھے جو ہمیشہ ظلم کرتے رہے. دو آیت کے حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جھونک والا, دوسرا حصہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے. جو پہلا حصہ ہے نا, اس میں اب ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں میں اب جو لسٹ بناؤں گا آپ کے لیے کہ اس بات کو کمزور کیا جا رہا ہے, اس کو پرزور کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے ان مستهم, اگر انہیں چھوئے. اگر کہا ہوتا, یہ ٹائپو ہے, اذا مستهم, اذا مستهم, تو کہا ہوتا جب انہیں چھوئے گی. ان اور اذا کا فرق سمجھ لیں. کوئی ماں ہے, اس کا بیٹا باہر بیرون ملک گیا ہوا ہے کام سے, وہ یہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی اس کے لیے, یا کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی. اگر کہے گی یا جب کہے گی؟ جب کہے گی, کیونکہ جب میں ضمانت ہے, جب میں گارنٹی ہے, جب میں زور ہے اور اگر میں کمزوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت میں کیا استعمال ہوا ہے؟ اگر. اگر تو آیت میں زور کا اضافہ ہو یا کمزوری کی گئی؟ کمزوری کی گئی. پہلی بات ٹھیک ہے, اگر, اگر چھوا. دوسرا ہے مست کا لفظ. مسا, اس کو عربی میں کہیں گے اقل درجۃ الاصابہ. چھونے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں, لمسا, مسا, ضرب, بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. چھونے کا سب سے باریک لفظ, یعنی تقریباً نہ چھونے کے برابر چھونا, اس کو مس کہتے ہیں. پتہ بھی نہ چلے کوئی چیز چھوئے, اس کو ہم کہیں گے مس. تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ کم سے کم سے کم سے کم چھونے کے بارے میں ہوا ہے, یعنی چھونے کا کمزور ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں. اب ایک اور مزید اضافہ ہو گیا اس کلام کی کمزوری میں, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر مست کا لفظ جو ہے نا, یہ تمسس نہیں ہے. ولا ان تمسسہم, تمسس ہوتا مضارع کا صیغہ, مضارع. مست ہے ماضی کا صیغہ. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. مثال تو یہاں سکرین پر نہیں ہے, زبانی سمجھانی پڑے گی مجھے. میں کہوں میں نے برگر کھایا, میں نے برگر کھایا, اور میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں, ٹھیک ہے. एक तो माजी और हाल का फर्क है, लेकिन एक और फर्क भी है। अगर मैं कहूं मैंने बर्गर खाया, कितने खाए, कितनी दफा खाया? एक दफा। अगर मैं कहूं मैं बर्गर खाता हूं, खाता रहता हूं, उसमें इस्तेमरार है, बार बार होने वाली चीज है। अगर इन तमसस कहा होता ना, तो होता अगर उनको ये छूती रहे, यानी उसमें एक से ज्यादा दफा का छूना होता। लेकिन यहां है मस्सत, माजी, यानी अगर छुए भी तो कितनी दफा, एक दफा। सबसे कमजोर छूने का लफ्ज, और वो भी हो कितनी दफा, एक दफा, और उसमें भी अगर का इजाफा, मस्सत हो। ठीक, आगे छुए भी तो क्या छुए, उससे पहले एक्चुअली ल इन, अच्छा अल्फाज में है इन मस्सत हम नहीं है, ल इन मस्सत हम है, उसको लामत तौकीद भी कहेंगे, लेकिन अगर ये शर्त पे आए तो मजीद कमजोरी करता है कलाम में। तो इस तरह तर्जुमा होगा, अगर इन्हें कभी छू भी जाए, यानी एक तो है ना, अगर वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, अगर कभी वो आ भी गया तो मैं उससे बात करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इम्कान है कि वो नहीं आएगा, बात में मजीद कमजोरी आ गई, बहुत सारी कमजोरियां आ गई ना कलाम में। तो ला इन और इन का फर्क यहां पर, ला इन मस्सत हम नफहतुन, अच्छा फिर नफहतुन नून से है, नफहतुन, और फिर है लफहतुन, अरबी में दो अल्फाज हैं। जब आप दरवाजा बंद करते हो ना, तो कभी कभी हवा का झोंका अंदर एकदम से आता है दरवाजा बंद करते हुए, उसको अगर वो थोड़ा सा ठंडा हो तो उसको नफहा नून से कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी गर्मी हो तो उसको लफहा लाम से कहते हैं। दरवाजा बंद करते हुए जो झोंक आती है, ठंडी हो तो नफहा और गर्म हो तो लफहा, बारीक सी ठंड, बारीक सी गर्मी। अगर तकलीफ की बात हो रही है तो कौन सी झोंक में तकलीफ है, गर्म में, उसकी शिद्दत में भी कमी कर दी, नफहा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लफहा का नहीं। बात हो रही है जहन्नम की, जहन्नम में बात होनी चाहिए गर्म हवा की, लेकिन वहां की सबसे ठंडी तरीन हवा के झोंके के बारे में बात हो रही है। फिर अच्छा, इस कमजोरी के अलावा छूने के एतबार से तीन तरह का मादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड है, इसको छूना सबसे ज्यादा महसूस होता है, पानी छुए महसूस होता है, हवा अभी भी हमें छू रही है, हर लम्हे छू रही है। सबसे कम एहसास छूने का किस चीज का होता है, हवा का, हवा छू रही है शायद में, इससे कम छूना मुमकिन नहीं है, और इससे बारीक छूना मुमकिन नहीं है, मजीद कमजोरी क्योंकि हवा का इस्तेमाल हो रहा है। वला इन मस्सत हम, फिर दूसरी बात, नफहा का लफ्ज मैंने बताया, जब आप दरवाजा बंद करते हो तो हवा आती है, तो इसका मतलब है आप अंदर नहीं आए, वो हवा बाहर निकली है, तो इसका मतलब है ये आयत अभी जहन्नम के अंदर की नहीं है, आप अभी बाहर हो और उसमें से एक झोंक आई और वो एक सेकंड से भी कम आपको जरा सी छू गई, पेरली छू गई, और ऐसे भी नहीं कि पूरी मुंह पर आकर लगी, क्योंकि मस का लफ्ज है तो इतनी बारीक छुई कि इससे बारीक छूना हो नहीं सकता। तो ये अभी जहन्नम के अंदर की बात नहीं है, अभी उससे बाहर की बात है। ठीक, वला इन मस्सतहुम नफहतुन, अगर कहा होता अन नफहतु अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम के साथ, तो वो इस्तिग़राक भी हो सकता है, अल अहदी भी हो सकता है, उसके मायने ये होंगे पूरी झोंक आकर लगी, यानी एक तो ना पूरी उसकी वेव आकर आपको लगी, लेकिन उसका एक थोड़ा हिस्सा हो, पूरी हवा भी ना हो, उस हवा का भी थोड़ा सा एक फ्रैक्शन हो, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हो, उसको कहेंगे नफहतुन, उसमें भी कमी कर दी अलिफ लाम हटाकर। फिर मिन अदाबि रब्बिक, वला इन मस्सतहुम नफहतुन मिन अदाबि रब्बिक, अरबी के तालिब इल्म यहां समझते होंगे, यहां पर मुदाफ मुदाफ इलैहि भी बनाया जा सकता था, वला इन मस्सतहुम नफहतु अदाबि रब्बिका, नफहतु अदाबि रब्बिका, अगर कहा होता मिन के बगैर तो होता तेरे रब के अजाब का एक की एक झोंक, तेरे रब के अजाब की झोंक, तो की का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। अगर ऐसा होता तो चौंक की नस्बत हमारे रब से हो जा हमारे रब के अजाब से हो जाती। लेकिन दरमियान में एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया है, वो क्या है? मिन। मिन से क्या होता है? तेरे रब के अजाब में से यानी एक तबईद, एक फासला कर दिया अजाब के लफ्ज़ और नफ़ा के लफ्ज़ के दरमियान, और उससे इन दोनों की शिद्दत में कमी आ गई, अजाब की शिद्दत में कमी आ गई। मिन, अजाब तो पूरा है लेकिन अजाब में से एक बारीक सी झोंक निकल कर कहीं फिसल के बाहर निकली और वो बेरली उसने तकरीबन ना छूने के बराबर छुआ। नफ़हतुन मिन। अच्छा, अजाब का लफ्ज़ तकलीफ़ का है, तकलीफ़ देने का, अजाब देने का। अजाब की कई सूरतें होती हैं, बहुत सारी सूरतें होती हैं अजाब की। आग भी अजाब है, काटना भी अजाब है, किसी को मारना भी अजाब है, मुख्तलिफ अजाब के कोड़े भी अजाब हैं। अजाब तो बहुत सारे हैं। अगर यहां आग कहा होता, मिनन नार, तो फिर हमें हरारत का एहसास होता कलाम में, और फिर हमें हवा की तकलीफ का एहसास होता कि क्योंकि हवा का ताल्लुक आग से है, तो फिर हम जहन में आता कि इस हवा में ठीक है उसकी ठंडी तरीन झोंक है लेकिन फिर भी आग से तो है ना। अजाब के लफ्ज में लाजमन आग का जिक्र है कि नहीं? नहीं। तो फर्ज करो वहां पीछे कोई और टॉर्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां से एक हवा निकल आई, अल्लाह ने इसमें से हरारत, इस कलाम में से हरारत निकाल दी अजाब के लफ्ज इस्तेमाल करके नार के बजाय। अच्छा, अजाब के बाद हो सकता था अजाबी जहन्नम, अजाब फिर आग की बात आ जाती, अजाब नार, नफ़हतुन मिन अजाब नार, नफ़हतुन मिन अजाब जहीम, नफ़हतुन मिन अजाब सईर, उनमें से कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। अगर ये कह दिया होता नफ़हतुन मिन अजाब अल्लाह अल अज़ीज़ अल मुक़्तदर, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह का ही अजाब है, अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? रब। रब के कितने मायने हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्या है? मालिक, सैयद, मुरब्बी, मुनइम, कय्यम। इसमें मुस्बित मायने हैं या मनफी मायने हैं? बहुत मुस्बित मायने हैं ना रब के अंदर। कलाम हो रहा है मनफी, कलाम हो रहा है मनफी, उसमें आपने बहुत सारे मुस्बत मायने वाले लफ्ज का इजाफा कर दिया, तो उसकी मनफियत में ज्यादती हुई या कमी हुई?
1: और कमी हो गई रब के इस्तेमाल से।
0: अच्छा, रब के बाद भी अगर कहा होता रब्बी हिम, नफ़हतुन मिन अज़ाबी रब्बी हिम, हिम होता उनके रब, जिनको सजा देनी है उनके रब की तरफ से, उनमें इशारा मुजरिमों की तरफ होता, मुजरिम तो कम अज कम मनफी है ना। रब्बी हिम नहीं कहा, कहा मिन रब्बी का, और का की जमीर जा रही है रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, उनकी तरफ जा रही। जब रसूल का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। तो यहां एक अजाब की आयत में आखिरी जमीर अपने रसूल की इस्तेमाल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मनफियत में और भी शदीद तरीन कमी। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं आपको? एक मुख्तसर सी बात है लेकिन इस तरह समझ लें कि कुरान में मेरे कम मुताले के हिसाब से कुरान में अजाब की कम से कम से कम शक्ल ये आयत है। इससे कम अजाब की कोई ताबीर मुझे नहीं मिलती कुरान में, शायद हो, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। वला इन मस्सतहुम नफ़हतुन मिन अज़ाबी रब्बी का, इससे कम तो मुमकिन नहीं है। और ये जहन्नम के अंदर भी नहीं, अभी जहन्नम से बाहर की बात है, यानी इससे कम ताबीर मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है, अल्लाह ताला ने एक सीन बनाया है हमें समझाने के लिए, और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा, जिस तरह कहते हैं ना खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा के लिए, तो वक्त का भी ताल्लुक अजाब से होता है। लेकिन इस आयत में कितना वक्त गुजर रहा है? ना होने के बराबर, छूना ना होने के बराबर, छूना भी हवा का, हवा भी बारीक, उस हवा का जिक्र भी रब और अपने रसूल के साथ मुंसलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: अच्छा चलो, इतनी से अजाब तो ठीक है इनको बर्दाश्त करने का, इतनी तो खैर है। अब अगली जो आयत का हिस्सा है उसको समझने से पहले एक मैं आपसे और एक और जगह आपको ले जाता हूँ। कोई मुजरिम होता है, उसको पुलिस पकड़ती है, उसको इंटरोगेशन रूम में डालती है, उसको एक दो थप्पड़ मार के, कहाँ था कल रात?
2: घर पे सो रहा था।
1: सही सही बता, वरना?
2: नहीं, मैं घर पे सो रहा था।
1: और उसको मार मार के मार मार के मार मार के आखिर में वो जाके गली में उठा हुआ था,
2: मैंने ही खाई थी चॉकलेट।
1: जो भी वो इतराफ करे, कितना टॉर्चर करना पड़ता है और आखिर में जाके वो इतराफ करें है। और जो पक्के मुजरिम होते हैं ना, जिन्होंने बहुत अरसे जुर्म किए होते हैं, तो वो और भी पक्के हो जाते हैं। वो कहते हैं मार लो, उसका क्या फर्क पड़ता है। इसे मुक्का कहते हैं। तो किसी और को लेके आओ, वो पक्के हो जाते हैं। अब ये इतना इतना बारीक अजाब बाहर से एक्सपीरियंस करने के बाद, इसका तजुर्बा करने के बाद, ये मुजरिम क्या करेंगे? इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ला यकूलुन्ना, मैं कसम खाता हूं वो कहेंगे बार बार बार बार और बार बार। यकूलुन्ना की जमीर मुदारिह है और मुदारिह इस्तेमाल होता है बार बार के लिए। लाम है कसम के लिए, जो नून आखिर में दो है ना, दो मजीद कसमें, इस तरह कह लो मैं कसम खाता हूं कसम खाता हूं कसम खाता हूं, तीन मरतबा बार बार कहेंगे बार बार कहेंगे बार बार कहेंगे। यकूलून में चार गुना ज्यादा तौकीद है। यकूलून एक तो मुजारे हैं, दूसरा उस पर लाम है, ये दूसरा दर्जा, फिर एक नून और फिर दूसरी नून, इसको नून थकीला कहते हैं। चार गुना ज्यादा जोर दिया गया है इस एक लफ्ज में, एक लफ्ज में। पहली आयत के पहले हिस्से में जोर ज्यादा दिया जा रहा था या कमजोरी लाई जा रही थी? कमजोरी। अब जैसे ग्राफ है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, अब इस आयत के दूसरे हिस्से में ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्या कह रहे हैं जी? इन या वैलना, वैल क्या है? वैल अरबी में कहते हैं ऐसी लानत को या ऐसी मुसीबत को या ऐसे अजाब को जिससे बुरा अजाब मुमकिन नहीं। किसी पर कोई ऐसी मुसीबत आए वो कहे इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, उसको अरबी अदब में वैल कहते हैं। या वैली, ओ मेरे साथ जो हुआ इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता था। रिवायात में आता है वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, और वो ऐसी वादी है जिससे जहन्नम खुद डरती है, उसका भी नाम वैल है। कुरान ने इस्तेमाल किया है वैल लिल मुकद्दिबीन वलकुमुल वैल अला मा तसिफून, वही का लफ्ज़ कुरान में भी जहन्नम के नामों में से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा वैल का लफ्ज अभी ये कह रहे हैं बाहर जहन्नम के खड़े हुए कह रहे हैं या वैलना, हम पर तो जो इससे बुरा हो ही नहीं सकता हो चुका हमारे साथ, इससे क्या खराब होगा? अभी वो अतर नहीं किया, अभी वो ये चल रहा है, अंदाजा करो। और उसके बाद ये चिल्लाने के बाद क्या कहता है? इन्ना, अब इन्ना आप यहां पे किसी ने कहा था इन्ना मैं हूं, अब क्या है समझ में आया? क्या है? बेशक, बेशक हम, बेशक हम। अच्छा बेशक हम भी बहुत है, उसमें भी बेशक का इजाफा है, ये नहीं नहनु या वैलना नहनु, नहीं बेशक हम, इन्ना का इजाफा। फिर उसके बाद इन्ना वालिमून, ना ना ना, इन्ना कुन्ना वालिमून, कुन्ना है हम हमेशा से ही, हम शुरू से ही, हम शुरू से ही जालिम थे, हम हमेशा से जालिम रहे हैं, हम कब से जालिम रहे। यानी उसने एक जुर्म का एतराफ नहीं किया। मैंने कहा वो सीन बताया था ना फिल्म वाला आपको, जो आप देखते नहीं हो, जो मुजरिम कभी एतराफ करता है जुर्म का, ये बंदा इस मकाम पे खड़ा हुआ एक जुर्म का एतराफ नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? मैं हमेशा से जुल्म करता रहा हूं, ये तमाम जुर्मों का एतराफ एक दफा में, कितने लंबे टॉर्चर के बाद टूटा ये कि इसका स्टेमिना टूटा और इसने एतराफ किया। इस जोक के बाद इसने अपनी पूरी जिंदगी के तमाम जुल्मों का एक दफा में एतराफ, रो रो के बार बार बार बार बार बार, लयकूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना वालिमीन, ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے, انا کنہ نظلم بھی ہو سکتا تھا, مضارع بھی ہو سکتا تھا. ظالم ہوتا ہے اسم, اور اسم فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہود کہا کرتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی, تھوڑے سے دن رہ لیں گے, ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار, چلے گا اتنا بھی ہمیشہ کے لیے. لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم ہے ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا, ہمیشہ کے لیے تو نہیں, اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے, تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو دن ہو گئے یا چھ دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا. تم اس کا ایک سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. يا سلام.
3: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
1: I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے, تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں, تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری.
4: الحدیث الثامن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام, فقال اقرأ بها في نفسك, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي, وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي, وقال مرة فوض إلي عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه.
5: حديث 8 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word 3 times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself. For I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into 2 halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me. And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawmiddin, Allah says, my servant has glorified me. And on one occasion he said, my servant has submitted to my power. And when he says, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, he says, this is between me and my servant. And my servant shall have what he has asked for. And when he says, اهدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, he says, this is for my servant. and my servant shall have what he has asked for. It was related by Muslim, also by Malik, At-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasai, and Ibn Majah.
6: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
7: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
8: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: கிடையாது.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mujza.
4: Yahud kaha karte the, lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Aap chhuegi bhi to kitna chhuegi? Thode se din reh lenge, ek weekend hi to hai yaar, chalega. इतना भी हमेशा के लिए? लोग आजकल तो मुसलमान भी कहते हैं ठीक है जहन्नम में हमेशा के लिए तो नहीं है ना, हमेशा के लिए तो नहीं, इतना तो है ना कम से कम. कुरान ने उस बात का बड़ा प्यारा जवाब दिया है, तुम्हें हमेशा की जरूरत नहीं है, हमेशा से डराने की जरूरत नहीं है, या उससे तुम्हें कोई तसल्ली करने की जरूरत नहीं है कि दो दिन हो गए या छः दिन हो गए या बस 12 दिन होगा. तुम उसका एक सेकेंड से भी कम उसके बाहर का चख लो तो ये तुम्हारा ये जो नशा है ना ये फौरन उतर जाएगा. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. يا سلام.